बेशक ये हमारे से थोड़ी गलती हुई, हमने ट्रैक पहले प्ले किया, क्यों रोता है उसके लिए जो कभी तेरा था ही नहीं। जी हाँ, काफ़ी लोग हमसे दूर चले गए हैं, हमारे अपने जैसे अब्दुल लतीफ साहब और हमारे इस पा के दूसरे अब्दुल इस्माइल साहब, तो अल्लाह ताला इनकी मगफिरत करें, इनको आला दर्जात दे जन्नत का। अगला कलाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर।

जी हाँ, एक थी खूबसूरत गजल जगजीत सिंह साहब की आवाज में, जो कह रहे हैं हार छूटे लेकिन रिश्तों को ना छोड़ना। और यही मैं कहना चाह रही हूँ कि मैं तीन हफ्ते, मेरे प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम आप सुनेंगे, मैं तीन हफ्ते आपके साथ नहीं रहूँगी, लेकिन आप मेरी दुआओं में रहेंगे इंशाल्लाह, और मैं भी आपके लिए दुआ करूँगी। इससे पहले मैसेज आया है, मैसेज गोज आउट टू अमान पाकर हु सेलिब्रेटिंग 78th बर्थडे टुडे, मे ही बी ब्लेस्ड विद मेनी मोर टू कम। दिस कम्स फ्रॉम भटकर दाऊद एंड फैमिली, अहमद अजीज़ा एंड चिल्ड्रन, बाउंड्री रोड, क्रेवन बी स्ट्रीट। जजाकला है। और बर्थडे मैसेज है 11 जुलाई के लिए शडली के लिए, हमारे अपने डॉक्टर रफ़ीक अब्बास जिनकी आज सालगिरह है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो इलाज किए थे बहुत सारे पेशेंट्स कोविड के वक्त। और एनिवर्सरी ग्रीटिंग्स मरियम और कासिम के लिए 15 जुलाई के लिए, तो अल्लाह ताला इनकी भी तमाम दिली मुराद पूरी करें, इनको खुश रखें, लंबी उम्र सेहत तंदुरुस्ती दें। और ये आता है दलवी अब्बास जेफरीज एंड एक्सटेंडेड फैमिलीज की तरफ से। अगला कलाम है अपने रंग में रंग दें।

बस यही दुआ है कि अल्लाह हमें उसके सिवा किसी की मोहताजी ना दे और हमें उसके रहमत के साए में रखे। रात के तकरीबन 9:45 होने चाह रहे हैं, लाल झंडी दिखा दी हमें शब्बीर जेकब साहब ने। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, उनकी मेहनत का और उनकी डेडिकेशन का और उनकी सिंसियरिटी का। जी हाँ, बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत ही बेहतरीन टेक्नीशियन है शब्बीर जेकब साहब, और आप हमारे सुनने वाले, आपकी दुआएं, आपकी हौसला अफजाई काबिल तारीफ है। जजाकल्ला। आप भी मुझे दुआओं में याद रखना, मैं भी आपको दुआ में याद रखूंगी। इसके बाद आप 3 हफ्ते मेरे प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम सुनेंगे। इंशाल्लाह मैं आपके साथ 9 अगस्त को लाइव प्रोग्राम में शामिल हो जाऊंगी। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि हमें यकीन है तू हमारे लिए बेहतर से बेहतरीन करेगा। जैसे तू राजी वैसे हम राजी, बस हमें अपनी रजा में राजी होने की तौफीक अता फरमा, इस्तिकामत अता फरमा। या इलाही हमारे गुनाह माफ़ फरमा और हमारी बुराई हमसे दूर कर दे और हमारे ईमान और कलिमे के साथ खात्मा कर दे। ऐ अल्लाह पूरी उम्मत मुसलमान को इत्तेफाक अता फरमा, फ़लस्तीन लोगों की गैब से मदद व नुसरत फरमा और आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा। या रब्बुल आलमीन तमाम बीमारों को मुकम्मल शिफा अता फरमा और तमाम मरहूमैन की मगफिरत फरमा और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम फरमा। इसी दुआ के साथ मैं आपसे रुखसत चाहती हूँ। इसके बाद आप सुनेंगे एक जानी बाबू की आवाज़ में, एक आपने सुना भी, फिर गज़ल होंगी आरजू की आवाज़ में और फिर अपने रंग में रंग दे खाजा जानी बाबू की आवाज़ में। मैं खुद ही अपनी तलाश में हूँ ओस्मान मीर की आवाज़ में, जो हम डेडिकेट कर रहे हैं डॉक्टर रफ़ीक अब्बास के लिए। तस्लीम आरिफ साहब की आवाज़ में एक वाक़िया होगा और सलामी होगी चांद अफजल कादरी साहब की आवाज़ में। इंशाल्लाह जिंदगी बाकी रहे तो 9 अगस्त को फिर मिलेंगे। फी अमानल्लाह, शब्बा खैर, जजाकल्ला खैर।